गहर्ज का साथ ही इंटरनेट अनलाइन को www.charitdharing.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 7:45 बजे को खबर में मेक को नमस्कार। खबर को शुरू में मुख्य खबर

0: राजियों एनिमल रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियों
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादी।

0: स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ।
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.
2: रेडियो धारी समय संकेत
3: अहिले बिहानको 8 बज्यो।

0: एनिमल रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियो
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: एनिमल रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियो
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: मोबाइलहरू, घड़ी, साउंड सिस्टम, डिसोम, पंखा तथा सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाइनुका साथै पुरानो मोबाइल लिएर नयाँ मोबाइल पनि साटिन्छ।
1: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिङबेसी मिलनटोल लेकाली टिकट काउन्टर सँगै प्रोप्राइटर ईश्वर श्रेष्ठ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841063130 र 9813180307।

0: हानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियो
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।